बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे कुल बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पा गुर कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन पैन गुर गुर करो गुर नैन पैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कहे गुरु सत कव नल कहे जिन गुरु न देखियो ने कियो ते अभ्या

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मण सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब जू
1: सच्ची तेरी सिद्ध सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर जमे सो कच कच महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सत्या वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिरसा पाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थिंजे की ता करना सर जा
0: महला तू जा एजक सच्ची की कोठरी सच्ची कब जबा एक नाम कुमाल एक नाम कुमे करीबना एक नाम पाने कडले एक नाम आया बिचनवाद ए पी आखन जापे किशन रा नानक गुरु जाने जाको।

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला विस्मानाथ विस्मात वेद विस्मात जी विस्मात पे विस्मात रूप विस्मा रंग विस्मात नागे फिरे जन विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेरे बडान विस्मात अर्थी विस्मात खानी विस्मात साधके प्राण
1: विस्मात स्नोक विस्मात विजोग विस्मात पुख विस्मात पो विस्मात शिफ्ट विस्मात सला विस्मात औदल विस्मात दरा विस्मात नेडे विस्मात दूर विस्मात वेख हादरा दूर वेख बडान रिया विस्मात नानक बुद्धन पूरे
0: महला पहला कुदरत से कुदरत सुनिए कुदरत।

और सूचे लेके तो भी समझा रहे हैं, सब गया बहुत था लेकिन विचार रहे हैं।

0: 말이 그러지. काजी मोहन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी काजी दे मोहन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत भरमत रह नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरित विकल बड़ो अभिमानी परधन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहितानी बलवंश छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण कर्ण सम्रथ श्री धर राख ले हो नानक के स्वामी कीरत कर्ण शरण मन मोहन जोहन पाप विदारण को हर तारण तरण समर्थ सवै विध कुलह समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोयो गत धाओ मूर्त घरी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो हो छो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम पद नानक राम रंग आत्म स्यों रहो रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार धरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंधप बुझन की सब सूझ परी वृद्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक घरी कर गहले हो कृपाल कृपा निध नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुघना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंधप तास्यों मो बढ़यो सो घना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
1: सत सूर सील बलवंत सत भाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज धुर धवल दुजा सेत बैकुंठ बीना परसै संत प्यार जह करतारे संजो सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जो नाम नाम नाम रस खान हर भोजन नाम रख सदा चाहे मुख मिष्ट बानी तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गति अगम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यत जन्म कल उजरे गुर परस्यो अमर प्रकाश बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोव रिद्धि बसै बावां जो तीन लोकांतर मोह हृदय वसै इक ही ओ सोय रस तिन ही जातो मुखो भगत उच्चरै अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो सोय नाम भगत परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छ दिन पायो चरण तपर्स कियत चरण गुर अमर पवर राय हाथ तपर्स कियत हाथ लगाए गुरु अमर पै जी तपर्स कियत जी गुर अमर बन जाय नैन तपर्स कियत नैन गुर अमर पिख जाय श्रवण तपर्स कियत श्रवण गुरु अमर सुनि जाय सक्यात सो हियो जित हियो वसै गुरु अमरदास निज जगत पित। सक्यात सो सिर जालप भनै जो सिर निवै गुरु अमर नित। सक्यात सो सिर जालप भनै जो सिर निवै गुरु अमर नित।
2: सतनाम कर सास सो दृढ़ नानक संग रियो काते अंगद लैण परिगत तास करन लिमरियो तित कुल गुरु अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखाना जो गुण लखिया नो इन्हें गुण अंत ना जाना वो तो विदाता है।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्थ वंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंक एक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जान प्राप्त में मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरे आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जान त्रिपतियां कहाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत संगत ते प्यारा हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार सत समा दीवान सत सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सचित पावस करियो सत श्री जियो संसार आप

जय कृपाल बोलो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्माद सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अजोग्यो नहीं जाए पूर सर्व यो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इतई उतई सदा मुकदे प्रभ दातो दातार परियो जात इत सरना मिले दान संतरीन जे लग फौज तरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर बाबा दियो दर्श मन जाओ भगत इो मन ठहरा बलियो चिराग अंधियार में बलियो चिराग अंधियार में सब काली उतरी एक नाम धर्मा परगत सरलियार पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्मा जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ दनिया सत संतो समाचन अभला सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे

तीन सुरैन मानु माही बसता तू कर कृपा प्रभु अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को

0: बाले बाले जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोए करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन से प्रीत बनी रहाओ तोरी न टूटे शोरी न छूटे ऐसी माधो खिंच
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट वीडियो broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

0: युक्त बैठे घर आया, ब्रह्मे कथम कदम अंत न पाया। राम भगत बैठे घर आया, राम भगत बैठे घर आया।
1: भजन आउंदा है एक संत वैष्णव कबीर जी दे घर आ गया। कबीर नूं चाह चढ़ गया, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां। ये पुरानी सभ्यता सी, सिख नूं सिख मिल पवे परिक्रमा करके ते मत्था टेकदा सी, मैनूं गुरु मिल पिया। नमस्कार कीती, लोई नूं आवाज मारी, लोहिए आ साडे भाग जाग पै घर संत आ गया। उड़ीए कि रहिंदे सी, आ गया प्रभु दा प्यारा। बैठ गया, इधर वेख इधर वेख, उन्हें कुछ वेख्या, ताणी वेखी, जुलाया वाला सारा समान वेख्या। ये वैष्णव सी, ये छूत छात नूं मन्नदा सी, विष्णु दा उपाशक सी। एवं वेख के कह लगा, वे तू जुलाहा कबीरा, तू जुलाहा। कबीर कहता, हाँ जी, होछी मत मेरी, मैं जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा। मत मेरी होछी है, अकल मैनू है नहीं, जात भी मेरी जुलाहा दे कर मेरा जन्म होया, पर मेरे ते परमेश्वर ने कृपा की थी, मैं नाम दा लहा खटदा सब आखो सतना। कबीर जी कहन लगे, की छकोगे? वो कहिंदा, ओ कबीरा, मैं तो तेरे घर आण के पछताउना कि मैं आ क्यों गया। अठाठ तीर्थां दी यात्रा कीती सी, सारा भजन सारी यात्रा एवें ही गई तेरे घर आण के, तू मैनूं खाण नूं पुछदा? मैं ते पछताउना, रात पै गई आ, जा किते सकदा नहीं, मुड़ के फिर मैनूं यात्रा करनी पऊगी। कबीर जी कहण लगे, संत जी, हुण तुसीं आत गए ही हो, पिटे ते गए ही हो, तुहाडा सारा कर्म धर्म सारा नष्ट हो ही गया, मुड़ के यात्रा कर लियो, होर टुबा ला लियो, पर जे तुसीं ना कुछ खादा तो असीं भी तुहाडे सिर चढ़ के कुछ नहीं खाणा, ये संताप भी तुहानूं लगेगा, शास्त्र पढ़ लो। हुण जां कोई शर्त रख दिओ, असीं पूरी ना कर सकीए। ओ कहण लगा, भी कबीरा, मैं हैगा विष्णु दा उपाशक, जे तेरे घर विष्णु नूं मैं रोटी खांदियां वेख लवां ना, तो मैं भी रोटी खा लूंगा। कबीर जी कहण लगे, संत जी, इन्नी देर ला दित्ती, तुसीं आउंदे ही कह दिंदे, अद्धा कम मुक्या होना सी, इन्नी देर ला दित्ती। हुण इह है नाम जपण वाला, उधर है दिखावा सब आखो सतनाम। कबीर जी कहण लगे, लोइए खिचड़ी तैयार कर। कबीर दा जिहड़ा खाणा सी ना मनपसंद, वो खिचड़ी सी, ते गुरु अमरदास महाराज दा जिहड़ा मनपसंद खाणा सी ओगरा सी, ओगरा लूण तो बिना, मिठे तो बिना, जिवें दलिया हुंदा इस तरह। लोइए इन्हां महापुरखां दी कृपा दा सदका अज साडे घर विष्णु भगवान आउणगे, खिचड़ी तैयार करो। खिचड़ी तैयार हो गई, इन अरदास कीती, हे निरंकार, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, मैं तेनू खिचड़ी नहीं सी देना चाहुंदा, तू ते जर्रे जर्रे जी, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे तू नहीं, तू वसदा है, पूरी शक्ति च वसदा है, पर साध खड़े पै गए, मैं तेनू खेचल नहीं सी देनी चाहुंदा। ये कहिंदा, रोटी तां खानी, ये तू आवें ते तू कृपा कर, तू जर्रे जर्रे च, सारे रूप तेरे ने। अज तू ये साध की खातर, संत की खातर, ये वैष्णव संत है, तू विष्णु भगवान हो के आ। अजें नमस्कार की जा, सिर चक्या तो विष्णु बैठे, ये गल गलत नहीं। बाणी का वचन है, अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, ये बाणी का वचन है, वो बेअंत है।

राग गौड़ी ग्वारेरी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीबर अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्ने होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी।

है अपर्म है वाहेगुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है।

मानस उड़ारी हमार की सत्संग रूपी मान सरोवर की आप जी ने धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त की आज पूर्णवासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम से कितनी रही सोचेंगे गंगाराम ने कुल की थी और गंगाराम ने तक की थी इसी रोज कर जाते और दूजे पासे माया जितनी लग जाए गुरु और संकोच कर नहीं माया तो वही साड़ी है जी चंगे पासे गुरु साई तुलसीदास जी ने लिखे माया है दो भात की दो चलावे राह एक ले जावे नरक को एक शराबा को बाबे च माया ला दो नरका का बुआ खुल गया गुरु दे लेखे ला दो और नरक मर जो तुसी जिथे तन मन आके जुड़े अपने तनों में पवित्र दर्शन ते शब्द दीते शब्द गुरु का रूप है बाबा जी बचन कर दे सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसी नू की दे सकदा ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा मानो शब्द वाला ही इश्क दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा आप शब्द का आदर कराउंदा है ते बाबा जी कहने लगे फिर बख्शिशी गुरु आप ही है तो आप जी ये समा एक दिन भी दो दिन भी कुछ दिन तो आप निपले गुस्सा अमृत वेले भी आके जुड़ते जिस प्रोग्राम नो कदे बना रहे सन बरफदार सरदार गुरचरण सिंह जी दीवा हरबंस सरदार करनैल सिंह जी सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे दे प्रबंध आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बनिया भीख दनाए प्रोग्राम सार दास पहुंच गए मार्ग दे दर ते हाजरियां भर रहे हैं हम बाकी दो ही दिन विच रहे हैं कल तक परसों सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना फिर नदी नाप से इतने साल 50 साल हो गए कीर्तन कर रहे हैं पहली बारी इस टाउन के दर्शन हुए गुरु खान के दर्शन आगे पीछे अरे सस्ता आओ जो अगला प्रोग्राम है आप जी का निकनेम है अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है और प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसी तरह जुड़ के गुरु दी खुशियां प्राप्त कर सको और गुरु अमरदास

करना सिद्ध है कि किस प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी, तुस तानू जो मेरे भगवान दे दर्शन जा रहे हो, नारद तुसी तानू जिन्हां नूं मेरे भगवान दे दर्शन मिलणगे, नारद ने तकिया, प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू कह रहे है। नारद ने कहा, क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहुंदा है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तां इक्को मंग है केड़ी।

आप अगली आस्था वाला जीवन बड़ा स्वादला होंदा है। खुशरी भाई आस्था वाले जीवन में आस है ना, इंतजार है ना, एदे च बड़ा सुख है, एदे च कोई अगम्मी रस है। साईं दी याद विच, मालक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां, पर प्यारी सतसंगत याद विच भी रहना ए भी इक अवस्था है। मालक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना, हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभु दर्स प्यासा नानक तके बल बल प्यास। इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालक मेहर करे। प्यारी सात संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण। आखो श्री अकाल।

Dormindo, otário, que dá até. आज जंगल बियाबान समाधि लगा के बैठा है। कौन मिठ बोला गुरु? कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। हर समय मिठाई बोलता। दुनिया का उद्धार करता है। एडा दयालु गुरु है। जे गलतफहमी विच आके कोई इस नूं वट्टे मारदा है, ए गुरु उहदे नाल भी प्यार करता है। कौन है ओ जिहा मिठा गुरु? प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। आओ इस परोपकारी गुरु का नाम एक बारी सारे जपो। कोई रसना भी खाली ना रह जाए। सारिया नूं दातां देण वाला हिंदू मुसलमान सारी सृष्टि के बंदिया नाल प्यार करन वाला मेरा गुरु नानक। आओ तुसी अदब विच सत्कार विच आओ। जिस तरह जुड़े हो गुरु नानक दे प्यार विच, नेत्रां द्वारा दर्शन मन जुड़िया है। आओ रसना भी पवित्र करो। प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। अजे भी सारे ने नहीं किया। गुरु नानक दा नाम लाभदायक है। ख्याल आएगा भी कितना क लाभ है गुरु नानक दा नाम जपण दे नाल। क्योंकि आपां सारे विहारी हैं ना, कोई काम करिए उहदा लाभ पहला सोच ले। चाहे दफ्तर जाण वाला है, चाहे दुकान ते बहण वाला, कोई भी किता करन वाला है, अपनी ड्यूटी देंदे हैं, सोचता है भी इतनी मैनू आमदनी हो रही है या इतनी मैनू तरह मिलती है। कई ख्याल आएगा कि भाई गुरु नानक का नाम जपिया मिलता की? आ जाते ना मन च हो मन के ही कारदा कड़ता रहा। कदे गुरमुख बन जाता है, कदे मनमुख बन जाता है, कदे दानी बन जाता है, कदे मंगता बन जाता है, कदे पुन्नी बन जाता है, कदे पापी बन जाता है, कदे नीवा हो जाता है, कदे उच्चा चढ़ जाता है टीसी दे उत्ते, कदे बुरा हो जाता है, कदे भला। ये मन का स्वभाव है। तो फुरना बन जाता है ना। तो आओ पहला पूछिए किसी महापुरुष नूं, जी तुसी रब दे प्यारे हो, गुरु नानक दे प्यारे हो, दसो जे गुरु नानक जपांगे तां की मिलेगा? तो लिखिया है महापुरुषां ने, नाम लिए सतगुरु नानक के, नाम लिए सतगुरु नानक के, दुख दर्द रोग मिटे सो भयानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, सुख संपत भोग मिले सो अचानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, जग काग चुगे मिल मोती मानक। सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा। ए तां किसे गुरु दे प्यारे दी दलील। पर आओ गुरु तो पूछी, गुरु तो किस तरह पूछांगे? बाणी द्वारा। बाणी द्वारा गुरु नानक बोलदा है। बाबा जी वड्डे बाबा जी बचन करदे, संतो पावना बना गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते, तू पावना बना गुरु नानक वाली। रोज कहिंदा जागदी जोत, जे जागदी जोत जान के तू पूजा करेगा। ए बाबा जी दी पवित्र पावन रसना तू बचन सुने है। बाबा जी कहिंदे सन रुमाल चुकण दी कोई लोड़ नहीं, आपे हुक्म मिलेगा खुश रही। ये तन्ने दा पत्थर बोलदा है साडा हाजर नाजर। जागदी जोत प्रगट गुरां की दे, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोलदा। बोलदा बाणी सदा बोल रही है, गुरु बोलता। तीन अखर लिखे होंगे चौरस तेज स्टाफ। तेज गड्डी आ रही है, जिन्हें स्टाफ कर लिया एक्सीडेंट तो बच गए। स्टाफ बोल रहे हैं तीन अखर, दवाइया पै दें दे। बोलते हैं ना, किस तरह उठे जाके ब्रेक लगा देने हैं। कोई होर तो नहीं बोले, किसी ने होरने तो इशारा नहीं किया, अपने आप ही ब्रेक लग जाती। फिर प्यारी सह संगत, वो तो तीन अखर हैं जिन्होंने स्टाफ के उत्ते अमल किया एक्सीडेंट तो बच गए। जिन्होंने अनगहली की मोटर मुद्दी फौरन हो जाती। पर तीन अखर मैं बोलते हैं इधर तो प्यारी सह संगत,
1430 ਸਫਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨਤਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਤੁਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਂ

जिन्नी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किनों ते जिन्होंने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शां प्राप्त करन वाले सर्वत माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

उन्होंने कहा कौमी साधना मारिए यहाँ काले कालना पेड़ो ना पचारिये ऐसी करा छेड़िए दरगे गया हारिए पढ़िया त्योमिया चार के विचारिये मुचले स्वर्गे मारिये सतनाम श्री वाह।

स्नान करके चले आए हैं। एक दिन कलेश्वर जाए एकांत बह के अपने सारे से मूल मंत्र का जाप करे पर बड़ा बम बड़ी शक्ति है ये लंकारी मंत्र जितना जप लो एदा बड़ा काम तुरदियां फिरदियां उठदियां बहदियां हर नाम ओ नाम वाहिगुरु जी का ते जपांगे सतगुरु दियां मेहरां फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी परलोक नाम करते मेले अखीरला दिन आसा जी की वार का मिलके लगाइए उस उपरंत कीर्तन मात्री और हर